हर जन केवड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलाय त्रिपता सहै, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखा लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गूजरी महला पंजवा, काहे रे मान चित वै उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पथर

सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेव्या तन सुख पाया सहजे ही हर नाम सुमाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा वरना कोए तू कर कर वेख है जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट।

सब बैरन का आवाज संगरे आए, पूर्ण हुए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ, सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन

जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आदि अंते कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार दसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सदरन को पल मोह बद कियो,

कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चिन्त न पैव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती। तुमरा

कहीं भूपा आंडज जेरज सेधज कीने पुत पुज खान बहोर रच दीने कहूं फूल राजा अब बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी।

अनहद बाजे। आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पय सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ता किए करते कहो विचारु सत कर गावो सोहिला सिवरे सजनहारु तुम गावो मेरे निरपो का सोहिला हूँ और युग सोहिल सदा सुख हो राहु नैत नैत जीवन समालियन अंदेशा का देवन हारु तेरा जाने क्यों तना पवै जिस दाती गवन कुमार संबत सहा लिखया मिलकर पावो तेल दिहु सजन सीसड़िया जय हो सहस मेल कर कर हो पहुंचा सदे नत पवन सदनहारा सिमरिय नानक से दे अवन राग आसा महला पहला से कर श्री गुर श्री उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख हो बढ़ाई तोय राउ बिस जसया कड़िया पहरा थेती बारी मावा सूरज को रुत अनेक नानक करते के वेस राग तनासरी महला पहला गगन मै थाल राव चांद दीप बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आनलो पवन चवरो करे सगल बन राई फूलांत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत फेरी राओ सहस तब नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूर्त नन एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बैन सह सब गंधे विचलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिसद चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भाव है सो आरती होए हार चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदिन मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिंग कहो होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर वो भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाही कर साधु अंजलि पुन वडाही कर डंडा उत पुन वडाही राओ साकत हर रस साधन जानिया तन अंतर हो मैं कंडाही ज्यो ज्यो चल है जुग दुख पावहे जम काल सह सिर डंडाही हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा हे जन नानक नाम धार टेक है हर नामे ही सुख मंडाही राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुन मेरे मीता संत टहल की वेला इहां खाट चलो हर लाया गै बसन सुहेला औद कटै दिन सरहणारे मन गुरमिल का सवारे राव हे संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस जगाई पिया वह रास अकाश कथा तिन जानी जा को आई सोई बिहा जो हर गुरते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहोर न होए गो फेरा अंतर जामी पुरख

वर्तमान युग में है, पर इतना नहीं है जितना के मनुखा की दुनिया च है। पर मनुखा के मूर्ख लोगों की दुनिया जितना दुख नहीं है जितना सियाना। कोई मनुख किन्ना तो दुखी है कहने उसकी सियाणप तो बढ़ जाए, उसकी सियाणप तो बढ़ जाए। मिर्जा गालिब कहते हैं परेशानियां सारे जहां की समेट कर, है खुदा कमाल की गल है, सारी दुनिया के कट्ठे किए तो दुख बेचैनियां परेशानियां, कि खुदा जब तेरे को कुछ बन नहीं सके कमाल की गल करता है। परेशानियां सारे जहां की समेट कर, जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। रब सारी दुनिया दिया मुसीबत बेचैनियां परेशानियां तू कटिया की, जब तेरे को कुछ होर बन नहीं सके तू मेरा दिल दिमाग बनाया, बल्कि मैं इतना बेचैन मैं इतना दुखी। कोई सुख रूप संसार नहीं है, गुरु नानक ने सब दुखी नानक दुखी सब संसार। जिस अद्धी रात नूं महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़िया सी, जिहड़ा कोचवान जिहड़ा सारथी छोड़न आया सी उसकी उम्र 60 साल सी, महात्मा बुद्ध की उम्र 22-23 साल सी। बुढ़ा सारथी महात्मा बुद्ध नूं समझांदा है सारी जिंदगी लोग पापड़ बेलते हैं, इस तरह के महल नहीं मिलते जो तू छोड़ के जा रहे, सारी जिंदगी लोग खज्जल खुआर होंगे, ये धन संपदा नहीं मिलती जो तू छोड़ के जा रहे। कितना की ये चाहत आती है आज्ञाकारी की सुंदर पत्नी मिले तेनों मिली हुई और तू छोड़ के जा रहे। कई दफा एक सुंदर बालक लिए बच्चे लिए लड़के लिए लोग तरसते रह जाने ने, तेरे घर सुंदर बालक हो जाए छोड़ के जा रहे। ऐसा की कुछ है जो तेरे को नहीं है क्यों जा रहे हैं, रोंदा होया सुन जाता है। ऐसा की है जो तेरे को नहीं है तो पता है महात्मा बुद्ध ने की किया, चैन नहीं है सुकून नहीं है सुख नहीं है, पत्नी है सुख नहीं है, बच्चा है सुख नहीं है, सोने सोने महल है गए नहीं सुख नहीं है, माँ बाप है गए नहीं सुख नहीं है, पत्नी है भी है सुख नहीं है, धन संपदा है भी है सुख नहीं है,

तन धन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाए रहाउ। ईत ऊत कहा लुभाव है एक स्यो मन लाए। महापवित्र संत आसन मिल संग गोबिंद त्याय। सगल त्याग सरन आयो नानक लेहो मलाए। कानड़ा महला पंजवा पेख पेख बिगसाओ साजन। रब अपना एकांत रहाओ आन दा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत। सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात। गुण रमंत दुख नास है रिद भयंत शांत।

आनंदा गुण गाए मंगल कसमला मिट जाए परीर संत चरण धरू माथ चांदना ग्रह हुई अंधेर संत प्रसाद कमल बिगस गोविंद भजू पीख नेरै।

तो परम राख लीजे काट बेरी रहाउ। बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रतनागर। शीतला हर नाम तेरा पूर्ण हो ठाकुर प्रभ मेरा। दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निध पतत उदारन। कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दरडायो। कानड़ा महला पंजवा धन्य ओह प्रीत चरण संग लागी। कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़ भागी रहाओ। मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी। और भरम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी। तू अथाहो अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रतनागी। नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्त ज्ञान धरियो प्रभ पागी। कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर कपट कामी। ज्यों जान है त्यों तार स्वामी रहाओ। तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार। जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार। गर्त घोर अंध ते काढ हो प्रभ नानक नदर निहार। कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ। कवन कवन कमन गुण कहिए अंत नहीं कछ पा।

ऊच नीच सब पेख समानु, मुख बकनो मन मान रहाउ, कट कट पूर रहे सुख सागर, पै भंजन मेरे प्राण, मनह प्रगास पयो भ्रम लास्यो, मंत्र दियो गुरकान, करत रहे करतग है करना मैं, अंतर जामी ज्ञान, आठ पहर नानक जस गावे, मांगन कहो हर दान, कानड़ा महला पंजवा, कहन कहावन कहो कई केते, ऐसो जन बिरलो है सेवक, जो तत जोग

सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ नाही किछ लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, किए को प्रीतम बिस्तर ना जाए, तन मन गलत भये तेह संग।

गहे रहे अटकाए, अनक भांत की एकै जाली, ताकि गंठ नहीं चोराए। फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए। काटे अज्ञान भरम मोह माया, लियो कंठ लगाए। कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग बनोद हमारे। नाम हो गावन नाम ते आवन, नाम हमारे प्राण आधार रहाओ। नामो ज्ञान नाम इस नाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे। हर नामो सोभा नाम बढ़ाई, भौजल बिखम नाम हर तारे। अगम पदार्थ लाल अमोला, भयो प्राप्त गुर चरनारे। कहो नानक प्रभ भये कृपाला, मगन भये ही रे दरसारे। कानड़ा मोहल्ला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो। देखत सुनत सबन कह संगे, थोर काज बुरो कह फेरो रहाओ। नाम बिना जेतो लपटायो, कछु नहीं नाही कछ तेरो। आगे दृष्टि आवत सब प्रगट, इहां मोहयो भरम अंधेरो। अटक्यो सुत बनता संग माया, देव नहार दा तार बसेरो। कहो नानक एकै पार उसो, बंधन काटन हार गुर मेरो। कानड़ा महला पंजवा, बिखै दल संतन तुमरे गाहियो। तुमरी टेक भरोसा ठाकुर, शरण तुम्हारी आयो रहाओ। जन्म जन्म के महापराशत, दर्शन भेट मटाहो। भयो प्रगास आनंद उजियारा, सहज समाद समाहो। कौन कह तुम ते कछ नाही, तुम समरथ अथाहो। कृपा निधान रंग रूप रस, नाम नानक लै लाहो। कानड़ा महला पंजवा, बूढ़त प्राणी हर जप धीरै, बिनसै मोह भरम दुख पीरै रहाओ। सिमरो दिन रहन गुर के चरना, जत कत पेखो तुमरी सरना। संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर भेटत नानक सुख पाया। कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मन है सुख पाई है। साध जना मिल हर जस गाई है रहाओ। कर कृपा प्रभ हृदय बसेरो, चरण संतन कै माथा मेरो। पार ब्रह्म कौ सिमरहो मना, गुरमुख नानक हर जस सुना। कानड़ा महला पंजवा, मेरे मन प्रीत चरण प्रभ परसन। रसना हर हर भोजन तृप्तानी, अखियन कौ संतोख प्रभ दर्शन रहाओ। करनन पूर रहो जस प्रीतम, कल मल दुख सगल मल हरसन। पावन पावन स्वामी सुख पंथा, अंग संग काया संत सरसन। शरण गही पूर्ण अबनासी, आन अपाव थकत नहीं करसन। कर गह लिए नानक जने अपने, अंध घोर सागर नहीं मरसन। कानड़ा महला पंजवा, कुहकत कपट खपट खल गरजत। मरजत मीच अनक बरिया रहाओ, अहं मत अनरत कुमित हित प्रीतम। एकत भ्रमत लाख गरिया, अनित व्यवहार अचार बिदहीनत। मम मत मात कोप जरिया, करुण कृपाल गोपाल दीन बंद। नानक उधर सरन परिया, कानड़ा महला पंजवा। जी प्राण मान दाता, हर बिसरते ही हान रहाऊ। गोविंद त्याग आन लाग है, अमर तो डार भूम पाग है। बिखै रस स्यो असक्त मूड़े, काहे सुख मान। काम क्रोध लोभ व्याप्यो, जन्म ही की खान। पतत पावन सरने आयो, उधर नानक जान। कानड़ा महला पंजवा, अवलोको राम को मुखार बिंद। खोजत खोजत रतन पायो, बिसरी सब चिंद रहाओ। चरण कमल हृदय धार, उतरिया दुख मंद। राज धन परिवार मेरा,
सर्ब सो गोविंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद कानड़ा महला पंजवा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूजो नाम अराद गुर सतगुर चरणी लाग हर पाव हो मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहु बिद खोजी सा पूजा जे हर पवास माटी की एह पुत्री जोरी क्या एह कर्म कमास प्रभ बहा पकर जिस मार्ग पावहु सो तुद जंत मलास अवर ओट मैं कोए ना सूजै एक हर की ओट मैं आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हौ बल बल सद बल जास कानड़ा महला पंजवा घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उदाहरण नाम प्रिय तेरा नव निध नाम निदान हर केरा हर रंग रंग रंग अनुपेरा काहे रे मन मोहे मगनेरा नैन देख साध दरसेरा सो पावै जिस लिखत ललेरा रहाउ सेवो साध संत चरनेरा बांछो धूर पवित्र करेरा अठ सठ मज्जन मैल कटेरा सास सास त्यावो मुख नहीं मोरै किस संग ना चालै लाख करोरै प्रभ जी को नाम अंत पुकरोरै।

एक टुलेर दर्शन प्यास बहुत मन मेरे मिल नानक देव जगत गुर केरे कानड़ा महला पंजवा ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाउ आत प्यास सफल मूरत उमंग हियो तरसना दीन लीन प्यास मीन संतना हर संतना हर संतना की रेन हियो अर्प देन प्रभ पये है।

पीत हस्त पूर्ण सब संगा रहाउ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हटन ग्रह अत रहत बटंगा और रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम क्रोध अत त्रिशन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई गई मिल साध जना पंच भागे चो

करो ये तुम्हारे बल बने बल बने बल गई। पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवथान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनक दास कीर्त करह तुहारी सोई मिलियो जो भाव तो जन नानक ठाकुर रहो समाए। एक तू ही तू ही तू ही कानड़ा महला पंजवां घर अठवां।

मन लोरो प्रिय प्रीत प्यारो मोरो रहाओ ग्रह सेज सुहावी अंगन चैना तोरो री तोरो पंच दूतन स्यों संग तोरो आए ना जाए बसे निज आसन ऊंद कमल बिग सोरो।

हर जाप जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंताप रहाओ जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जन उदरह जिस उदार हो आप बिन सजाए मोह पै परमा नानक संत प्रताप खानड़ा महला पंजवां कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो दान देहो जी संतो हो जाप जियो बलिहार मान मोही पंच दोही उर्ज निकट बसेओ ताकि सरन साधुआ दूत संग निवार रहाओ कोट जन्म जोन भ्रम्यो हार परयो द्वार कृपा गोविंद भई मिलो नाम आधार दलभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार कानड़ा महला पंजवां घर ग्यारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सहज सुभाए अपने आए कछु न जानो कछु दिखाए प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ संजोग मिलाए साध संगाए कतहु न जाए कर है बसाए गुण निधान प्रगट्यो एह चोलै चरण लुभाए आनत जाए थान थनाए सर्ब समाए रसक रसक नानक गुण बोलै कानड़ा महला पंजवां गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमत रूप अगम अगोचर रहियो सर्ब समाई रहाओ कहन भवन नाही पायो पायो अनक उकत चतुराई जतन जतन अनक उपावरी तौ मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निध जन नानक संतरे नार

अरविंद शासन निष्पोर रहाउ लाए प्रीत कीन आपन टूटत नहीं जोर प्राण मन धन सर्वसु हर गुण निजे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिन सेओ दुख कोर।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन पहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावे गु ज्यो ज्यो जपै तिवै सुख पावे सतगुर सेव समावै गु रहाउ भगत जना की खिन खिन लोचा नाम जपत सुख पावे गु अनरस साध गए सब नीकर बिन नावै किस ना सखावै गु गुरमत हर हर मीठा लागा गुर मीठे बचन कढावै गु सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम बाणी स्यों चित लावै गु गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या मन भीना निज कर आवै गु तै अनहत धुनी बाजह नित बाजे नीचर धार चुआवै गु राम नाम एक तिल तिल

कनक कनक पहरी बहु कंगना कापर पांत बनावे गू नाम बिना सब भीक फिकानी जन्म मरे फिर आवे गू माया पटल पटल है पहारी कर घूमन घेर कलावे गू पाप बकार मनूर सब पहारी बिख दुत्तर तरियो ना जावे गू पहु बैराग भया है बोहित गुर खेवट शब्द तरावे गू राम नाम हर पेटी है हर राम नाम समावे गू अज्ञान लाए सवालिया।

हर हर नाम तुरावै गु जो जो जपै सोई गत पावै ज्यो ध्रुव प्रहलाद समावै गु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम लगावै गु कर कृपा सतगुरु मलावहु मिल सतगुर नाम त्यावै गु जन्म जन्म की हम मल लागी मिल संगत मल लह जावै गु ज्यो लोहा तरियो संग कास्ट लग शब्द गुरु हर पावै गु संगत संत मिलो सत संगत मिल संगत हर रस आवै गु बिन संगत कर्म करै अभिमानी खड पानी चीकड़ पावै गु भगत जना के हर रखवारी जन हर रस मीठ लगावै गु खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुर उपदेश समावै गु भगत जना को सदा निव रही है जन निवह ता फल गुण पावै गु जो निंदा दुष्ट करह भगता की हरनाक्ष ज्यो पच जावै गु ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावै गु जो जो भगत होए तो पूजो परमन परम चुकावै गु जात निजात देख मत परम हो सुख जनक पगी लग त्यावै गु जूठन जूठ पई सिर ऊपर खिन मनुआ तिल ना दलावै गु जनक जनक बैठे सिंघासन नौ मुनि धूर लै लावै गु नानक कृपा कृपा कर ठाकुर मैं दासन दास करावै गु कानड़ा महला चौथा मन गुरमत रस गुण गावै गु जेवा एक होए लख कोटी कोट त्यावै गु रहाओ सहस फनी जप्यो सेख नागै हर जपत्या अंत न पावै गु तू अथाहा अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावै गु जिन तू जप्यो तेई जन नीचे हर जपत्या हो कौ सुख पावै गु बिदरदासी सुत शोक शोहरा कृष्ण अंक गल लावै गु जल ते ओपत भई है कासत कासत अंग तरावै गु राम जना हर आप सवारी अपना बिरदर खावै गु हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर गुरसंगत नाव तरावै गु ज्यों सत संगत तरियो जुलाहो संत जना मन पावै गु खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ त्यावै गु सतगुर बचन बचन है सतगुर पाधर मुक्त जनावै गु सासन सास सास बल पाई है निह सासन नाम त्यावै गु गुर प्रसादी हम मैं

मंगो जो भी मंगना है, जो जो मांगे सोई सोई पावे, सेव हर के चरण से। पार जाते हर को नाम जड़ी बनी है कि काम धेन घर घर गुण काम। वो तो गऊ है बेचारी इंद्र दे दर ते खड़ी, तो अनु एथे धरती ते ही देती काम धेन गऊ। वो कहड़ी है जो वाहगुरु दा कीर्तन करना है, उदे गुण गाने ये काम तेन गऊ। कमेंट्री च गा लो, बर्मिंघम गा लो, वो गुरुद्वारे आके गा लो, बाजा खोल के अपने बेडरूम च गाई जा, रज के आखो सतना। ऐसी काम तेन गऊ आ कीर्तन जेड़ा बख्शे है सतगुर पातशाह कहने एवं ना फिर इंद्रपुरिया च मंग दे। हाँ गुरु अर्जन का दर ऐसा बख्श दिता, काम तेन हर हर गुण काम। फिर एक होर छुट्टी देती, जे तेथो नाम भी ना जाप होवे, तेथो कीर्तन भी ना होवे, फिर सारे तो वधिया गल ओ भी धरती ते देती केड़ी। तेनू इंद्रपुरी देवत्यां दी सभा विच जाके कथा सुन दी लोड़ नी, सब ते उत्तम हर की कथा। आजा संगत विच गुरु दे दर ते। ए गल्लां पट देख रहे सी अमृतसर साहब, सुन रहे सी आप, सारिया गल्लां तो उत्तम काम तेन गऊ तो भी, पार जात रुख तो भी उत्तम उपर सरेर से, वो है सतगुरां दी बाणी दी कथा शब्द दी विचार कर लेनी। महाराज दा अमृतमयी इतिहास सुनना, सिंघा शहीदा सिंघा दियां करनिया सुनिया गुरमुखानिया, ये सब ते उत्तम। जदों ये सुनेगा ता नाम सुनत दर्द दुख लथा। ते सतगुर पातशाह ने बचन कर दिता, किथे देवत्यां दी सभा विच जाके गंधर्वां तो राग सुनोगे तुसी, किथे देवते इंद्रपुरी विच जाके वशिष्ठ मुनि दी कथा ब्यास जी तो सुनोगे तुसी। आपां ते नहीं जाउणा, किथे गुरमुख प्यारिओ मुनिया मांग समाधियां शिवजी मांग जोग करोगे नाम जपोगे, आ जाओ गुरु अर्जन दे दर ते। भट कहंदे हे गुरु नानक दा दर इत्थे काम तेन गऊ, पार जात रुख। वाहिगुरु दा नाम पार जात रुख, सतगुरां दी बाणी दा कीर्तन काम तेन गऊ, ते सतगुरां दी बाणी दी कथा, ए दोहां तो ही उपर। ताही लिख दिता सुन हर कथा उतारी मैल, महापुनीत पहे सुख सैल। सुनते पुनीत कहे ना तो नित्य पढ़ दे तुसी, पर महापुनीत जी तो गाहा पवित्र कोई चीज होवे ही ना। वो साडे मन दी मैल कट के इना पवित्र कर दंदी है गुरबाणी दी जड़ी विचार है अंदर वजवे, सुन लिए ज्ञान गुरु दा, महापुनीत पहे सुख सैल। सैल नाम है पहाड़ दा, सैल पहाड़ नूं कहने। इत्थे सुख सैल क्यों कहा भाई, अर्थ तां कई ने पर पंजाबी दा जिहड़ा सीधा अर्थ है, जिहड़ा पहाड़ हुंदा है वो कदे हिलदा नहीं हुंदा, टिकिया हुंदा ना एक जगह। आ हिल चखड़ आई जान जो मर्जी आ जावे खड़े, ये सतगुरां दी बाणी दी कथा सुन के ओ सुख मिल जाना जेड़ा कदे हिलना ही नहीं। रज के आखो सत महापुनीत पहे सुख सैल। बाकी सुख हिलदे ने, थोड़े मेरे भी हिलदे हैं, साडे भी थोड़े भी मिलता जाने पर हिल जाने। कई बार तुहानू अगे भी बेनती करी है, सुख तो मिल जाता थोड़ा जा भी 250 पाउंड का कोट पेंट खरीदे है, थोड़ा जा चौड़ा होके तुरेगा सड़क ते, तीए दिन रहना नहीं बस गया। जिदन एक बार ड्राई क्लीन करा दिया फिर तो कपड़े भाईचारे च रल जाने, अज फिर आखो सत ना फिर तो गए। सुख तो मिलता है कौलियां प्लेटा जी खड़का के चमचे चुमचे 5-स्टार होटल विच, दुए दिन है ही नहीं, सांझ नूं है ही नहीं। होर सुन लो अपनी गल, बड़ा सुख मिलता जिदन मुंडे नूं व्याह के लियाने, आपां बड़े भंगड़े पहने, बड़ी बिस्की बुस्की चूचे तड़कते हैं,
ਬੜਾ ਕੁਛ ਖੇਡਦੇ, ਬੜਾ ਸੁਖ। ਪਰ ਜਦ ਸੱਤ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ, ਗਿਆ ਅੱਜ ਖੇਡ ਕੁਛ ਸਤਨਾਮ, ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰ ਬਿੱਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਨ ਭੰਗਣ ਨੇ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ, ਬਸ ਦੂਜਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾਮ ਤੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਣਤ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀਆਂ ਮਹੇਸ਼ਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੁਖ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਹਿਲ ਸੁਖ, ਅਹਿਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੂ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੇਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਤਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕਣੀਆਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਵ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਵੈ ਮੁਨ ਇੰਦਰ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੁੜੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਮੈਂ ਸਰਪਰ ਮਰਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਨੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਲਾ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬਿਰਸ ਬਤਾਲ, ਇੱਕ ਆਹ ਦਰ ਹੈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਸਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: परम सत्कार्यो गुरु स्वरूप साध संगत सतगुरां दी बख्शिश होई है। सच खंडी दरबार दे दर्शन ददार सतगुरां दी बाणी दे जाप गुरु के लंगरां दी सेवा सतसंगत दा सुभाग समा चल रहा है। मेहर कीती है धन धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने जो सतगुरां दी गुरु स्वरूप बाणी दी विचार आपां नूं बख्शिश होई है। वेदां दे अवतार भट श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे चरणां विच अपना प्राश्चित करन वास्ते मिले हुए सराफ नूं कट के मुक्त प्राप्त करन वास्ते पुजे हुए हन, जिन्हां ने सतगुरां दा वचन मन के सतगुरु नानक देव महाराज जी तों उपमा महिमा वड्याई जो सतगुरां दे परपकार सवैयां विच वर्णन कीते हन, हुण पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी दे सवैये सिफत सलाह चल रही है, जिन्हां विच सानू पुरातन डूंघाइयां दा ज्ञान बख्श के दस रहे हन कि हुण कलयुग दे विच सतगुरु नानक देव महाराज उन्हां दे सरूप गुरु अर्जन देव महाराज जी दी कैसी गुरगद्दी है, कैसा तख्त है, कैसा प्रताप है, कैसा ज्ञान है, ये विचारां चल रही हैं। आओ प्यार दे नाल सरवण करिए।
1: अंत ना पावत देव सबै मनु इंद्र महाशिव जोग करी।
0: गुरु अर्जन देव महाराज उस अकाल पुरख सत चित आनंद परिपूर्ण परमात्म देव श्री अकाल पुरख वाहिगुरु जी दा आप स्वरूप हो, जिन्हां दा 33 करोड़ देवतिआं दा राजा इंद्र, 9 मुनि आदिक, 7 ऋषि आदिक, 84 सिद्ध जोगी आदिक, जिस दा भेद नहीं पा सके, अवतार न जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, ओही परमेश्वर दा रूप आप हो, जिन्हां दे भेद पाउण वास्ते दर्शन करन वास्ते शिवजी महाराज कैलाश पर्वत ते 88,000 वर्ष दा एक चौंकड़ा समाधि स्थित होके बैठे रहिंदे हन, उस वाहिगुरु दा अंत मिले, ओहदी कुदरत दा कुछ पता लगे। अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र शिव जोग करी। शिव जोगी दा रूप हन, जटा धारियां हुई हन, गल विच सप्पां दी माला है, विभूति मई हुई है, उजाड़ बियाबान कैलाश पर्वत ते बैठे ध्यान लाउंदे हन बड़ा लम्मा समा, पर हे अकाल पुरख वाहिगुरु तेरा अंत तेरा पारावार उन्हां तों भी नहीं पिया। महान ग्रंथां दे विच वचन आउंदा गुरसिख प्यारियो कि शकर होना जानी रिख गौतम के द्वार गयो, गौतम होना जानी इस कुकड़ में थोथ है। इंद्र नू मान सी, तुसी पिछली कथा सुन चुके हो, ओदा मान टुट गया, ऐसी कुदरत ने गेड़ा दत्ता चक्कर दत्ता, इंद्रपुरी दा राज सब तो सुंदर स्त्री सची ओदी घरवाली ओनू छड के गौतम ऋषि दे दर ते बुरा कर्म करन वास्ते गया, नहीं जान सकया वाहिगुरु दी कुदरत की भाणा दो मिनट नू वरत जाना है। गुरसिख प्यारियो शकर होना जानी, शकर नाम है इंद्र दा, रिख गौतम के द्वार गयो, ओदी कुदरत नू जाने नहीं सकया, गौतम ऋषि दे द्वारे ते जाके को कर्म कीता हल्या, ओदी स्त्री नाम सी जो सुंदर सी बहुत, चंद्रमा ने विच चुगली खादी, शकर होना जानी रिख गौतम के द्वार गए, गौतम नू भी मार हो गया सी कि मैं बहुत वड्डी तपस्या कीती है, ये तो गाहां हुण परमात्मा दी भगती कोई है ही नहीं जिथे मैं पुज गया, बहुत वड्डा ऋषि सी गौतम, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਛਾਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਨਕਲੀ ਮੁਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਵਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਵਾਂਗ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਘਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜੇ ਉਹ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਗੁਫਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਫਾ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਨਵਾਕਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਮੁਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਵਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਚਾਰਾ ਨਹਾਉਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਹਲਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੋਭਾਇਆ, ਸਹਿ ਸਰੀਰ ਚਿਹਨ ਪਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨ ਪਛੋਤਾਇਆ।
2: ਕੇਵੋ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
3: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

वाहे गुरु नित बड़ी चल सामंतर प्रार्थान से दीना तन तन गुरु गोविंद सिंह साहब जी हो सामंतर प्रार्थान से दीना वाहे

किन्हीं बंजिया कांसी तांबा, किन्हीं बंजिया कांसी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संतो बंजिया नाम गोविंद का, संतो बंजिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारा हीरा।

अंतर कृष्णा मर गई हर आपे मेल मिलाया आपे भेद जाए तेजन साचे सदा सदा जिन्नी हर रस सुनो लोका मैं प्रेम रस दुर्जन मारे वैरी संगारे सतगुर मुको हर नाम

छड़ा रत्ता मेरा चोला सज रंग टोला रत्ता मेरा चोला सज रंग टोला ए मन सुंदर।

0: करे गुरुकथा करे पता गुरुकथा करे
1: गुर नाम दृढ़ाए रंग थो गुर नाम दृढ़ाए रंग थो गुर नाम दृढ़ाए रंग थो।

हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिखसाई, माया मोह परम पै फूले, सुतदा राशों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई, सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुपाई, दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय, हो गए सिफत संबंधी, नूर अरसों पुरसों चटी है, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशा, जिस पास बैठिया सोई है, सबना का बेसार।

माया मोह जलय अभिमान, गुरमुख हार रस चाखै कोय, तिस सदा आनंद होवै दिन राती, पूरै भाग प्राप्त होए राउ। शब्द दीपक वरतै तेह लोए, जो चाखै सो निर्मल होए, निर्मल नाम होमै मल तोय, साची भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिस सदा हरख नाही कदे सोग। आप मुक्त अबरा मुक्त करावै, हर नाम जपै हर ते सुख पावै। बिन सतगुर सब मुई बिल लाए, आन दिन दाज है शांत न पाए। सतगुर मिले सब तिश तृष्ण बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। सतगुर मिले बिन सतगुर सब मुई बिल लाए, आन दिन दाज है शांत न पाए। सतगुर मिले सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, जप जी साहिब एक ओंकार। सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजुनी सह पं गुरप्रसाद, जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचै सोच न हो गई, जे सोची लख वार, चुपै चुप न हो गई, जे लाई रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी, जे बन्ना पुरियां पार। सहस स्याणप लख होहें, ता एक न चलै नाल। किव सजियारा होई है, किव कूड़ै टुटै पाल। हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै बड़ियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्म जे बुझै ता हुम कह न कोए। गावै को दान होवै किसै तान, गावै को दात जाने निशान। गावै को गुण बढ़ियाइया चार, गावै को विद्या विखम विचार।

काल असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर राम कोर असंख मुर्गर जाय जोर असंख गलबड़ त्याग माही असंख बापी बाप कर जाही असंख गुड़ियार गुड़े फिराही असंख मलेश मल बख खाही असंख निंदक असर करें पार नानक नीच कहें विचार वर न जावा एक बार जो तुद भावै साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लो असंख कहें सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिनह लिखे तैस सिर नाहे जग फरमाए देव तब बाहे जिता गीता तेता नाओ गुण नावे नाही को थाओ कुदरत कवन कहां विचार वारा न जावा एक बार जो तुद पावै साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हथ पैर तन दे बाणी तोता उतर सुखे मूत बलिदी कपड़ होए दे साबून लिया उतोए

अमूल गौण अमूल व्यापार अमूल व्यापारी अमूल भंडार अमूला वह मुल रजाही अमूल पाही मुला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल वशीष अमूल निशान अमूल अमूल कर्म अमूल फरमान अमूलो अमूला कहन जाई आख आखरे बुलाई आख वेद पाठ प्राण आख पढ़े करें बखयान आख है ब्रह्म आख इंद आख है गोपी दय गोविंद आख है ईश्वर आख सिद्ध आख है गीते गीते बुद्ध आख दानवे आख दीप आख है सुर नर मुंजन सेव

आत दोत प्रचंड मृतगत अखंड लिस कर्म दृश धर्म सर्व प्रनाड्या आन दंड वाड्या चाचरी छंद दग प्रसाद अभंग गोविंदे मकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे कामे बजंग बजा छंद चतर जकर करता चतर जकर हरता चतर जकर धारनी चतर जकर जानी चतर जकर वारती चतर जकर भरती चतर जकर पाले चतर जकर काले चतर जकर वासे चतर जकर वासे चतर जकर माने आए चतर जकर धाने आए जा श्री छंद ना सत्र न मित्र न परम न पितर न कर्म न काये अजन्म न जाये न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिशा दिशा दृशा कृष भगवती छंद प्रसाद कथते के आस जिस है कि अपिज पिस है कि अगंज कर्म है कि अपंज परम है कि अपिज लोक है कि अदित शोक है कि अवधूत वर्ण है कि विभूत करण है कि राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुझाएं कि अशोक वर्ण है कि सर्वा वर्ण है कि जागतंग कृतियां कि शतरंग क्षत्रियां कि ब्राह्मण स्वरूप है कि अनुपान रूप है कि आदो देव है कि आप देव है कि चतरंग बहन है कि क्या दीन है कि रोज जाय कर ही मेरे हाय कहे के पाक बेअब हैं के गैबुल गैब हैं के अबुल गना हैं के शाह निशा हैं के कारण करेंदा हैं के रोजी रहना हैं के राज करीम हैं के कर्मंग करीम हैं के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वत्र गावन हैं के सर्वत्र पावन के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र धान्य हैं के सर्वत्र गावन हैं के सर्वत्र पावन हैं के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र भाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र माने हैं सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापे आएंगे सर्वत्र थापे आएंगे सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फीम है के अकल राम है के सर्व कलाम है के हुसन भजू है तमाम रुजू है हमेशा सलाम है सलीखन मदाम है गरीबल सकाशत है गरीबल प्रास्त है बलेंद्र मकान है जमीन जमान है तमीजल तमाम है रुजूअल निधान है हरीफल जीम जाके जगीन है नेकल तरंगा पेद है पंगा जीअल नवाज है गनी खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रमुक्त प्रभूत है प्रमुक्त प्रवाह है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्वाद स्वरूप है काल अनूप है अंगाद रूप है नाद स्वरूप है अनंगी अनाम है त्रिपंगी त्रिकामे तरवर्ग तरवाद्य गंजे गादे शुभंग सर्व भाग्य सर्वानुराग्य त्रिपक स्वरूप है सजय सूत है कि नरक प्रणास है मृत्युल प्रवास है निरोक्त प्रवाह है सदैव सदाए विभुक्त स्वरूप है प्रजोक्त अनूप है निरोक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजोक्त अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है बेखा लेख है परम कर्म नाद जगाद है जया पय भूत है दूत है ना शब्द है सदंत बंद है अभक्त है बृगत है नाश है प्रकाश है नजंत सुनंत लेख देख है अलेख है पेख टा गाय संभ गम है नीला नाद है अनत सुनत जात जात है चरपट छंद दव प्रसाद सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं कर्ता ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता।

हुकमने गुरु के रागा वो सच्ची बाणी कहे नान सुनो संत ओषा कथियो कथ गाणी ए मन जंचला चतराई कने न पाया चतराई न पाया कने दुष्ण मन मेरिया हे माया मोहनी जने धर्म भुलाया मात मोहनी जने के ती जन ठगौली पाईया कुरबान कीता दिस विटो जन मोह मीठा लाया कहे नानक मन जंचल चतराई कने न पाया हे मन प्यारिया तू सदा सच संभाले हे कुटुंब तू जे देखदा चलै ना ही तेरे नाले सास तेरा चलै ना ही तिस नाल क्यों चित लाई है ऐसा कम मूले न कीजै जित अंत पछताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले आगम गोचरा तेरा अंत न पाया अंत न पाया कहने तेरा अपना आप तू जान ही जी जन सब खेल तेरा क्या गो आख बखाणही

जियो निर्मल भारो निर्मल भारो तो निर्मल जियो मारे तनी जन्म जुए हार आए तिशना वा रोग लगा मरण मनो बसारिया बेदा मैं नाम उत्तम सो सुने ना ही प्रज बेदा लिया कहे नानक जिन सच तजया कूड़े लागे तनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल भारो निर्मल भारो तो निर्मल जियो निर्मल सतगुर दे करणी कमाणी कूड़ी की सोई पहुंचे नाई मनसा सत समाणी जन्म रतंजनी खटिया पले सेवन जारी कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले जे को सिख गुरु सेवती सन्मुख हो वह हो तो सन्मुख से कोई जीव रहे गुर नाले गुर के चरण हृदय त्याई अंतरात्मा संभाले आप छड सदा रहे परने गुर बिन वर न जाने कोई कहे नानक सुनो संत सो सिख सन्मुख होए जे को गुरते विमुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर से कोई पुछो वे किया जाए नेक जोनी परमे आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुर सब सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी तां गावो गुरु केरी बाणी आसर बाणी जिनको नजर कर्म होवे हृदय दना समाणी पीवो अमृत सदा रहो अर रंग जपो सारंग बाणी कहे नानक सदा गावो यह सच्ची बाणी।

0: आनंद सुनोबड़ बागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते प्रीत कहते भगत सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजी अनहर तूरे सुनते प्रीत कहते भगत सतगुर आया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजी अनहद तूरे।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: Thank you.

कौन आने कभी व्यवस्था जो विश्वना जो पर मैला दूजा जो दसू ज्ञान दसू मैं दसू ब्राह्मणा कत्री दसू दूर दसू दूध दसू कृष्णा सर्व दसू दसू जे को जाने प्यो नानक दा बदा जाए।

ब्राह्मण को बनावो गोबर करना जाते पैसा जमा दे धर्म ले जाबा चंद्र पूजा बड़े बाबा।

होमत प्राण कनक असव है भरपूमदान न्योली कर्म कर बहु आसन जैन मार्ग संजम अति साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तौ पी होमै मैल न जावे हर के नाम समसर कछ नाहे न

अनक जतन कर त्रसनना त्रहपै पेख अनेक अग्न नहीं बुझै कोट उपाव दरगह नहीं सिझै छूट सनाही उपयाल मोहे व्यापह माया जाल अवर करतू ते सगली जम डान गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान हर का नाम जबत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे सार जना की सेवा लागे जे

मी सगल कटाके अंतर जामी अपने गात में ते जान आपे आपन संग आपे प्रभराते तुमरी उस्तते तुमते होए नानक अवर ना जान सकोए। सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जाप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जपहो जी सदा। सगल बानी मह अमृत बानी हर को जास सोने रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जिहे कहटे।

तब पावै कार गहल हो ओढ़ निभावै। कहां बुझारते बूझै डोरा निस कहिया ताओ समझै पोहरा। कहां बिसन पाद गावै गुंग जतन करै ताओ पी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत उहां उस गमन। करतार करुणा मै दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै। संग सहाई सो आवै ना चीते जो बैराई तासो प्रीते। बलुआ के गृह

ब्रह्म ज्ञानी कहति हृज एक जो बसधा कौ खोद कौ चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी कह गुनाओ नानक जो पावक का सहज सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह माने होय प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊंचा मन पने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सबू पर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पहया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म

ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तहवत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी का हुए सो फला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी सांग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी का एकाय रंग, ब्रह्म ज्ञानी का बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सर जागत, ब्रह्म ज्ञानी हूँ बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी का मान परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी का कहर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी का बाल बाल जाइय। ब्रह्म ज्ञानी का खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने तेहेद, ब्रह्म ज्ञानी का सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाक्षर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी के मेत कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी की गाते ब्रह्म ज्ञानी जान। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सर जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सबू परिहाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक। उरत हरे जो अंतर नाम, सर्व में पेख भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक हो अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन मह प्रीत निरंजन दर्श। पर त्रय रूप ना पेख नेत्र, साध की

कर कृपा अंतर उर तहर पास प्रेत मुग्ध पाथर का उतार सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगते कितै ना पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुहर कर्म।

मह पार ब्रह्म हंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिन को मिल्यो प्रभ अविनाश कई कोट मंग है सतसंग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनका हुए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा तहन तहन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक एक अंक आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा तहन तहन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड।

सोई फन थियो कबहू ऊंच नीच महबस कबहू सोग हरख रंग हस्त कबहू निंद चंद व्यवहार कबहू उब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहू नृत कर बहपहाते कबहू सोए रह दिन राते कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की हो तरवाल कबहू होए बह बड़ राजा कबहो पेखारी नीच का साजा कबहू अप कीर्त मह आवे कबहू पला पला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिर ही रह गुर प्रसादे नानक सच कह कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मोन तहरी लावे ध्यान कबहू ताट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन परम परमिया नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे ज्यों प्रभ पावे तवै नचावे ज्यो तस पावे सोई होए नानक दूजा अवर ना कोए कबहू साध संगते हो पावे।

नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस को जो भला कहावै तसह भलाई निकट न आवै सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इस को सुख नाही कोए जब ही जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जो नमह फिरता जब तहरै को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देस जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस घटे लख को उठ तहवै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनेक भोग बिख्या के करै नह तृप्तावै खापे खापे मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बडभागी किसै प्राप्त होए करन करामन आपे आप सदा सदा नानक हर जापे करन करामन करन हार इसके हाथ कहां विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आपे आपे प्रभ सोए।

संतका निंदुक महा अततायी संतका निंदुक खिन चिकन ना पाई संतका निंदुक महा हत्यारा संतका निंदुक परमेश्वर मारा संतका निंदुक राजते हीन संतका निंदुक दुखिया अर्दीन संत के निंदुक को सर्व रोग संत के निंदुक को सदा बिजोग संत की निंदा दोख मह दोख नानक संत पहवै ता उसका पिही होय मोख संत का दोखी सदा अपवित संत का दोखी किसै का नहीं मित संत के दोखी को डान लागै संत के दोखी को सब त्यागै संत का दोखी महा अहंकारी संत का दोखी सदा बिकारी संत का दोखी जन्मै मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दोखी को नाही ठाओ नानक संत पहवै ता लय मिलाए संत का दोखी अध बीचते टूटै संत का दोखी कतै काज ना पहुँचै संत के दोखी को उद्यान परमहिया संत का दोखी उजड़ पाइया संत का दोखी अंतर ते थोथा ज्यों सास बिना मृतक की लोथा संत के दोखी की जड़ किस नाहे अपन बीज आपे ही खाहे संत के दोखी को अवर ना राखन हार नानक संत पहवै ता लय उबार संत का दोखी ओ बिललाए जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दोखी भूखा नहीं राजा जो पावक ईंधन नहीं त्रापै संत का दोखी छुटै अकेला जो बुआड़ तेल खेत माहे दुहेला संत का दोखी धर्म ते रहत संत का दोखी सदमित्या कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक जोत सपहवै सोई थया संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दोखी को दरगह मिलै सजाए संत का दोखी सदा सहकाइया संत का दोखी ना मरे ना जीवाइया संत के दोखी की पूजा ना आसा संत का दोखी उठ चले निराशा संत के दोख ना त्रिष्टै कोई जैसा पहवै तैसा कोई होए पया किरत ना मेटै कोई नानक जानै सच्चा सोए सब कर तिसके ओह करना हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की वस्ते करहो दिन रात तिसहते आवह सास गिरास सब कछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करना हार दूसर कौन कह विचार जिसनों कृपा करे तिस अपन नाम दे बडभागी नानक जन से सलोक तजहो स्यानप सुर जनहो सिमरहो हर हर राय एक आस हर मन रखहो नानक दुख भरम पहो जाए अष्टपदी मानुख की टेक बिरथी सब जान देवन को एक भगवान जिसका दिया रह अघाए बोहर ना तृष्णा लाग आए मारे राख एको आपे मानुख कै किस नाही हाथ जिसका हुक्म बूझ सुख होए जिसका नाम राख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन ना लाग कोए उसते मन मह कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा

संत है संग चाल, अवर त्याग लिखिया जंजाल। तहन तहन कह सब कोए, मुख उजर हर दरगह सोए। इहो व्यापार विरला व्यापार, नानक ताक सरबलिहार। चरण साध के तोहे तोहे पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध की तुहूरे करो स्नान, साध ऊपरे जाइया कुर्बान। साध सेवा बड़ भागी पाइया, साध संग हर कीर्तन गाइय। अनक बिघ्न ते साधु राख, हर गुण गाय अमृत रस चाख। ओट गही संत है दर आया, सर्व सुख नानक तेह पाया। मृतक को जीवाल नहार, भूखे को देवत आधार। सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे। सब किस तिसका हो करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ ना होग। जाप जान सदा सदा।

पाया सोई होग, हरन पहन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। अनद रूप मंगल सर जाकै सर्व थोक, सुनी है कहरिता कै राज महराज, जोग मह जोगी तप मह तपीसर, गृहस्थ मह भोगी। तिहाय तिहाय भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का कने अंत ना पाया, जाकी लीला की मेत नाहे सगल।

अपेख करहे करंग नाना भेद कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जाप जाप जीवै नानक हर नाओ नाम के तहरे सगले जंत नाम के तहरे खंड ब्रह्मांड नाम के तहरे सिमरत वेद पुराण नाम के तहरे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तहरे आगास पाताल नाम के तहरे सगल आकार नाम के तहरे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद्म है सो जन गत पाए रूप साते जाका साते अस्थान पुरख साते केवल प्रधान करतूत साते सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल साते सत उत्पाते सत करणी निर्मल निर्मली जिस है बुझाई तिस है सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास साते नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जाकर हृदय प्रवेश सत निरते बूझा जे कोय नाम जपत ताकि गत होए आप साते किया सब साते आपे जाने अपनी मित गाते जिसकी सृष्ट सो करण हार अवरना बूझे करत विचार करते की मित ना जाने किया नानक जो तिस भावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पह बिस्मा।

गुरुदेव इउ रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमरे प्राण आधार। अनेको पावना छूट नहारे, सिमरत शास्त्र वेद बिचारे। हर की भगत करहो मन लाए, मन बंशत नानक फल पाए। संग न चालसे तेरा तना, तू क्या लपटाव है मूर्ख मना। सोत मीत कुटंब अरबनता, इनते कहो तुम कमन सनाथा। राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कमन छुटकार। आस हस्ती रस असवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना, नाम विसारे नानक पछताना। गुर की माते तू लेह आने, भगत बिना बहु डूबे स्याने। हर की भगत करहो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे। आप जपहो अवरा नाम जपावहो, सुनत कहत रहत गत पावहो। सार भूत सत हर को नाओ, सहज सुभाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उतर समैल, बिनस जाय हो मैं बिख फैल। होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल। छाड़ स्यानप सगली मना, सार संग पावह सच तना। हर पूंजी

भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्टि महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुबर परे प्रेम रस रंग उपजा चाओ साधक संग। परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रकाश अंदर निबलाग। बड़ भागी जपया प्रभ।

जब अकार इह काशनां दृश्यता पाप पुन तब कहते होता। जब तहरि अपन सुन समाधे तब बैर विरोध किस संग कमाते। जब इसका वर्ण चिह्न न जापत तब हर्ष सोग कहो किस है व्यापत। जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम। अपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तही तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत तह तब कवन निडुर कवन कत डरे। अपन चरित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख अपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपन आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा। जह निर्मल पुरुष पाते होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल छिद्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसह भूख कमन तृप्तावै। कर्ण करामन करने हार नानक करते का नाहे सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई। जह सर्व कला आप है प्रवीण तह वेदक देव कहा को चीन। जब अपन आप उरत हर तो सगन अपसगन कहा।

निगरी एक स घट माहे अनेक रंग नाना दृष्टाहे नौ निद अमृत प्रभ का नाम देही महस का विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज विस्माद तिन देख्या जस आप देखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कहट कहट ब्याप रहे आप भगवंत हरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूरन प्रतिपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी वै संतर माहे चार कुंट दह दिसे समाहे।

आप छोड़ बेनती करहो सार संग अग्न सागर तरहो हर तन के परले हो पंडहार नानक गुरपूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवह नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जियो का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सोने सोने आनंद करै प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरन

सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तहरी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तते करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्विच्छाता की पूर्ण होए प्रधान पुरख।

जिस बख्शे वे परवाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग

ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों अमृत वेले दे दीवान दी हाजरी आप जी ने भरी है और सत्कार योग भाई साहब जी होरां ने आसा दीवार दा कीर्तन बड़े अदब और हजूर दे चरणा विच जुड़ के आपां नूं सरवण कराया ते गुरु देव जी ने आसा दीवार नूं अमृत वेले गुरु घर अंदर उच कीर्तन करन दी एक मर्यादा नेम बन दिता। असल विच आसा दीवार दियां 24 पौड़ियां नाल हजूर ने जिहड़े सलोक अंकित कीते ने जे किते एक एक शब्द गुरु नानक साहिब जी दा आसा दीवार दा पढ़ लिया जाए हजूर ने केड़ी गल केड़ा बचन है जो आसा दीवार विच सानू स्पष्ट नहीं कीता। जे उना ने परमेश्वर दी इस बनाई हुई कादर दी कुदरत नू तकिया ते तां विस्माद अंदर चले गए। जे संसार दी रचना दी गल कीती ते बाबा गुरु नानक देव जी ने पहली पौड़ी विच ये कहा के आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाउ दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाहो उस कादर दी बनी हुई इस कुदरत नू कादर तो वख नहीं कीता। कह लगे मता समझे के जो कुछ मैं देखना पिया ए परमेश्वर तो वखरा कुजे बस एक गल चेते रखी जो कुछ ओने साजिए आप टिकाणा बना के एदे विच बैठ गया। आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाउ दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ आसन दा अर्थ टिकाणा ला के बैठ गए। यही गल बाबे नामदेव ने कही। हजूर ने बाणी विच क्या मता संसार तो नफरत करके दौड़े चेते रखी संसार अंदर रेंदिया होया ए रब दा बनाया होया बाग ही बाग विच तां लोग खुशी प्रतीत करदे ने तुरदिया तू रब दे बनाए कोई बाग नू किते एवे भयानक जंगल जान के दूर ना चला जाए। सह बाबे नामदेव ने अमृत बचन किते कहन लगे हर का बागरा नाचे पिंदी मैं सागरा। खैर जड़ी अर्ज मैं कर लगा आसा दीवार विच सृष्टि दी रचना तो शुरू कीता विस्माद दी गल कीती उस मालक दे बनाए हुए खंडा ब्रह्मंडा दा जिक्र कीता ते जेड़े फोके कर्म कांड समाज करदा पिया सी मेरे गुरु नानक दे एक एक बचन ने बा दलील उन्हां कर्म कांडा नू खंडन कीता। कदी हजूर दे बचन पढ़ो मैं सिर्फ उदाहरण वजो अर्ज कर रहा। आसा दीवार दा कीर्तन रोज गुरु घरां विच हुंदा है ते जे किते आसा दीवार दे अर्थ बाणी दा बोध समझ पै जाए ते मनुख अपने हिरदे विच झाती मारे के गुरु नानक बाबा जी कहिंदे ने की ते आपां की कमाने पै। साहिब ने जे किते कर्म कांड दी गल चली उदाहरण एक दिती जे किते दे घर बच्चे दा जन्म होना ते पुरोहित ने कहना इस घर दी रसोई विचों मैं कुछ खाना नहीं। पुछना क्यों? क्योंकि एदे घर अंदर सूतक है ते गुरु नानक साहिब दी दलील तको कहन लगे मेनू एक गल दस इस संसार विच केड़ी थां है तेरे मुताबक जन्म होना ही केवल सूतक है ते अपने घर दी रसोई विच झाती मार तेरे घर दे अंदर ता सूतक रोज वड़िया रहिंदा है। उन्हें पुछया महाराज ए क्यों? हुणे असीं साहिब दा बचन सरवण कीता जेकर सूतक मनिए जेकर दा अर्थ जे तू मनने बाबा नहीं जे तेरी ए दलील है के सूतक है। साहिब कहन लगे सब तै सूतक होए सब तै सारियां थावां ते फिर सूतक है गोह है अतै लकड़ी अंदर कीड़ा होए।
कदी तू घर गोहे बालने, पुराने समय पिंडा विच गोहे नू तोड़ के बालो, ते उस गोहे अंदर भी कीड़िया दा जन्मे, कीड़े दी पदाइशे, ते जे किते लकड़ नू बालन लगो ते लकड़ भी झाती मारी कीड़े ता ओदे विच भी पै होए ने। जेकर सूतक मनिए सब तै सूतक होए, गोहे अतै लकड़ी अंदर कीड़ा होए, ते नाल चेते रखी जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए। जेड़े तू दाने खाना पे जे आपा देखने हैं, जिमीदार कणक ही बीज दे भावे ओ सुक चुकी है, पर चेते रखो ओदे विच भी जिंद है, ते जे उस दाने विच जिंद ना होवे ते धरती दे हिक विचो पौधा बन के किवें बाहर निकल जाए। साहब कहन लगे जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए। महाराज कहन लगे सूतक क्यों कर रखी है, सूतक पवे रसोए। ते महाराज फिर सूतक की यही कारण के धर्म दे खेतर अंदर कई वरी बारी विखावे ते बेहद जोर दिता जांदा है, पर अंदर नू घड़न दी कोशिश कोई करोड़ां विचो एक अदा करदा है। बाबे नानक दा उपदेश आसा दीवार दी बाणी कई वरी सोचने अर्थ करिए, इन्नी क्रांतिकारी हजूर दे बचन कहन लगे।

नौवे गुरु का दसवां रूप है तू, माता गुजरी का सोहना लाल है तू, जिन्हें पिता करवाया शहीद हस के, दुनिया विच अनोखा ओ बाल है तू, ओदा लोक परलोक सवार दिता, जिदे उत्ते भी होया निहाल है तू, मोया होया नू जिंदगी बख्श दिती राखा धर्म का बेमिसाल है तू, मोहन चंद की सिखी दे प्यार तो प्रमाण हो गया। हुण चौथे सर की मंग होई, सामने बैठिया संगतां की ए हालत बनी हुई सी, गुरमुख सरां की भेटा दे रहे सन, मनमुख नीवियां पाई बैठे सन, बेमुख तां उठ के ही चले गए। चौथी बारी एक गुरु दलारे साहेब राय ने शीस गुरां नू अर्पित कर दिता। इस तों पिछों जदों गुरु जी ने पंजवां सर मंगिया तां इस मंग नू पंजवें हिम्मत राय ने पूरी करके गुरु जी का कार्ज ही पूरा कर दिता। गुरु जी ने पंज सरां की भेटा लैके ऐसा कातक वरताया, पंजां नू नाल लैके स्टेज ते आ गए। पंजां नू जीवत वेख के संगतां हैरान हो गई। सतगुरां ने ठंडा स्पष्ट निर्मल जल बाटे विच पाया, पंजां बाणियां दा पाठ कीता, नालों नाल ठंडा फेरदे रहे। जदों अमृत तैयार हो गया, माता साहिब देवां ने पतासे बाटे विच पा के मां दा हिस्सा पूरा कीता। इस तों पिछों इन्हां नू खंडे बाटे दा अमृत छका के गुरु जी ने गिदड़ां तों शेर इओं बना दिता।

कहन लगे जोगी से छोटा लनहार लपट रहे थे अंध अंधार। कहन लगे फर्क समझ ले बिरख दी छाया जेड़ी ये मानना तेनू हक है जिनी देर रहे मां पारों की पकड़ न करी क्योंकि वो बिरख दी छाया ने बिरख जाने तेरे नाल नहीं रहना। कहन लगे इसे तरह संसार दे रिश्ते कुटुंब जिनी देर तेनू मिले है मान मैं ये नहीं कहता छड़ दे पर पकड़ न कर ये छाया है उसे जश्न ने पैदा की इन फड़के ने बैठे पर होया उल्टा जो दीसे सो चालनहार लपट रहे होते हैं अंधार तू नू फड़के बैठी जो कि झूठ है छाया नू फड़िया नहीं जा सकता छाया तेरे नाल नहीं निभ सकती पर मानी जा सकती। फर्क गुरु कहने लगे कुटुंब का सुख मान मैं तेन यह नहीं कहता कुटुंब छड़ के जंगलों में चला जा कुटुंब पुत्र मिले है सत्कार मान प्यार कर सेवा संभाल कर पर एक ख्याल करें यह सोच के कि यह हमेशा नाल नहीं निभना बिल्कुल छाया है ते नाम बंदगी पर उपकार गुण धर्म सच जेड़ा है वो एक ऐसा फल है जिन्हों संभालिया जा सकता है ऐसा फल है जिहड़ा हर थावे नाल ले जाया जा सकता है रात नूं भी दिन भी। गुरु ने इसे लिया दिता कहन लगे जय मात पिता सुतमीत न भाई मनूहा नाम तेरे संग सहाई जय मां भैण दूत जम दलै ते केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल होवे अत भारी ते हर को नाम खिण माए उधारी। कहन लगे जय पेंडे मां अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जय पंथ तेरा को ना सुजानू हर का नाम ते नाल पछाणू जय मां भैण तपत बौधाम ते हर के नाम की तुम ऊपर छाम जय त्रिखा मन तुझा करख है ते नानक हर हर अमृत बरख है। वो हर थावे ले जाने वाला ले जाया जा सके इसलिए ख्याल करी जिदे टाणी नाल लगा होया जिहड़ा फल है उन्नू ते मनुख संभालदा है ते संभालण लई कोल स्टोर बनांदा है पर उसे ही दरख्त तो पैदा होई हुई छां नू कोई मनुख मान सकदा है संभाल के फड़ के कोल स्टोर विच नहीं रखदा। फल इक्को दरख्त दे ने दोनों कहन लगे इन्हां दोहां फलां दा जिहड़ा भेद है ना अंतर है ना ओ समझ लै। गुरु कहिंदे ने जिहड़ा सच है ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਪਰ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਛਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਛਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਛਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਨਾ ਕਰ क्योंकि छाया नू पकड़िया नहीं जा सकता। गुरु ने इस लाइन विच इस पहली पौड़ी विच जिहड़ी अज दे शब्द दे आरंभ सी उहदे विच गल समझाई कहन लगे।

0: केड़बोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.